0: कोई ना जाने तेरा कहता केवड़ चिरा रहो।
1: सब सुरती मल सुरत कमाई,
0: सब कीमत मिल कीमत पाए।
1: ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाय,
0: कह न जाए तेरे तेल वड़ियाए।
1: सब सत सब तप सब चंगियाइया,
0: सिद्धा पुरख के आ वड़ियाइया।
1: तुझमें सिधि किने न पाया,
0: कर मिले नहीं ठाकर हाइया।
1: आखन वाला क्या बेचारा,
0: सिफती परे तेरे भंडारा।
1: जिस तू दे तिसे क्या चारा।

0: तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता
1: तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापे जपे प्यांता
0: तेरे अनेक पढ़े पो सिमरत शास्त्र जी किर क्रिया खट करम करंता
1: से पद पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता
0: तू आद पुरख अपरंपर

0: तो मैं शाड़ कोई अवर ना त्याओ
1: जो पर जाओ सो तुम ते पाओ
0: सेवक सिख हमारे तारिये
1: चिन चिन सत्र हमारे मारिये
0: आप हाथ मुझे भरिये
1: मन का त्रास ने भरिये
0: पूजो सदा हमारे पति

0: सिद्ध कर्म सब होई
1: दुष्ट शास है सके न कोई
0: एक बार जिन तुम्हें संभारा
1: आंख आंस ते तहे हमारा
0: जिन्हर ना त्योहारो का
1: गार दुष्ट दुख ते रहा
0: खड़ खेत में सहन त्योहारी
1: आप हाथ ते रहे हो बारी
0: सब थोड़ में हो सहाई कृपा करी हम पर जग माता
1: करत करा पूरन सब राता
0: कृपे सकल दे को हरता
1: दुष्ट क्यों क्या करता
0: सीरियस जब पे दे आला
1: पूरन करा ग्रंथ काला
0: मन वांछित फल पावे सोई।

चक्र चनर बन चादर पाथ नैन जे रूप रंग रेख पे कह न सत के मूर्तन पो प्रकाश अमित।

जन नानक हर प्रभ पाणिया राम राजया मिलिया सहज सुपाई एक तसे जय हर प्रभु राम राजया गुरु दसे हर मेले मैं मन तन प्रेम बै राग है राम राजया गुरु

ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी सफल दर्स पेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान मत सच पाया बलराम जियो सतगुरु मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए।

देखे विषम सुनिए विषमाद नजरे आया जल थल मयल पूर्ण स्वामी घट घट रहया समाया जिस ते बजात समाहे समाया कीमत कहन न जाए जिसके चलत न जाही लखने नानक तिसहत आए राग सूही छंत महला पंजवा कर दू

सिर सिर रिजग संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया। उड़े उड़ आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कमन खलावे कमन चुगावे मन में सिमरन करिया। सब निदान

वरना त्याहूं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया

उसने भरिया जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करे हो रक्षा राख ले हो मैं राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो

समझो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सगल प्रजाजन आप सवारी, सेवगन को सेवगन सुख दियो, सत्रण को बाल मोह बाद कियो।

माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शाय करता श्री अस्तुज पे दयाल्ला पूर्ण करा ग्रंथ तकल्ला।

आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया ए वडिआइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखां

कश्चन वस्तु पह्यो सात संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो।

बख्शो, ए निमाणिया दे मान ने ताणिया दे ताण, ने ओटिया दी ओट, सचे पिता वाहिगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज, आप जी ने अपार मेहरामत बख्शिश कृपा की। आप जी की हजूरी विच संध्या वेले दे सुंदर दीवान साज रहे हैं। साजरे दीवान की आरंभता विच आप जी की पवित्र बाणी सो दरदे पाठ होए, गुरबाणी पाठ करद्या होया होईयां अनेकां ही प्रकार दियां गलतियां भुलां दी माफी बख्शो, अगां वास्ते शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी दात बख्शनी,

इतनी सेवा प्रवान करनी जी, कीर्तन कर दिया प्रहलाद माफी बख्शनिया। हूँ पाए साहब कुलदीप सिंह जी दमन टकसाल वाले अज के विशेष दिहाड़े संग्राम दिहाड़े आप जी ने पितृबाणी कथा राही जोड़न गना पाओ सो प्यार से सरण करो जी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के शहीदी दिहाड़े कल आ रहे हैं, इसे संबंध कल दवान साज रहे हैं, कण पाठ साहब चल रहे हैं। कल शाम रहरा साहब के पाठ तो पहला संपूर्णता वा इस संबंध दवान सजने हाँ। आप जी ने सारे दवान हाजरी भर के लाहे प्राप्त करने जी। आओ हम कथा राही जुड़ना करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

पाट मथुरा जी फरमाउंदे ने पन मथुरा पन दा मतलब की बेनती करदा है मथुरा पाट गुरु अर्जन देव जी दी शख्सियत दे बारे उना दे स्वरूप बारे दसदा है और दसदे दसदे विच वेरवा पहले गुरुआं दा भी विच कर दिंदा है कि पारस परस परस परस चार पातशाहियां दा जिक्र आ गया ना गुरु नानक पारस उस तो बाद दूसरे पारस गुरु अंगद देव महाराज जी तीसरे गुरु अमरदास पातशाह जी ते चौथे सोढ़ी सुल्तान पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी उन्हां तो बख्शिश जिहड़ी प्राप्त हुई अगे गई जोत पारस परस परस परस गुरु गुर गुरु कहाए गुरु बने गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां नूं जन्म दिया ही तै जन्मत ब्रह्म पछाणत तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणत तुहाडे जन्म दे नाल ही तुहानूं ब्रह्म ज्ञान की जानकारी सी और गुरु रामदास दे घर तुहाडा अवतार होया जन्म होया अवतार होया ते पट मथुरा कहिंदे ने कि कल युग दा गुरु अर्जन बहुत वड्डा जहाज है इतना वड्डा जहाज है कि सारी सृष्टि भावें चढ़ जाए हुण कुल खलकत समझ लो और किन्ने जीव जंतु आ जाते ने यह सारा संसार ही भावें गुरु अर्जन देव जहाज ते सवारी कर लवे ते यह जहाज की एक खूबी है कि यह जहाज ने पार लाना ही लाना है दुनिया के कई जहाज भावें डुब जाते ने लेकिन गुरु अर्जन देव जहाज ऐसा है जिहड़ा इस भव सागर चो पार कर दिंदा है गुरु अर्जन एक ऐसा जहाज है जो अग ते चलता है अग्नि ते चलता है अग्न सागर बूढ़त संसारा क्योंकि जिहड़ा संसार है ये अग दे सागर दे विच डुबदा पिया निरा सागर नहीं गा अग्न दा सागर है अग्न सागर बूढ़त संसारा बूढ़त कहने डुबदे ने जरा डुब रहा हो संसार की हालत है पर इस जहाज च बहिंदा कौन कौन है कौन सवारी करना चाहता है जिन्हें पारले कंडे जाना हो जिन्हें शौक हो जिन्हें कोई इश्क होवे कोई मुहब्बत होवे जे प्रिया की सिख होवे ते वो आदमी कहेगा कि मैं इस जहाज से जरूर बहना है बैठांगा ता ही पार जावांगा पार साजन अपार प्रीतम क्योंकि पार सज्जन बैठा होया हजे मिलिया नहीं जाना की है जरिया की है जरिया जहाज है वो जहाज कौन ने वो गुरु अर्जन देव महाराज ने कल युग जहाज अर्जुन इत्थे अर्जुन लफज मैनु किसी ने ठीक कराया सी कि लफज अर्जन नहीं है अर्जुन है अर्जुन उसनु कहिंदे ने इहदे अखरी अर्थे ने जिसनु कोई जित ना सके जिस ते कोई काबज ना हो सके जिसनु कोई मार ना सके ऐसी मूर्त होवे सत रूप सत नाम ते ए अर्जन देव जहाज केड़े मटीरियल दा बनिया क्योंकि जहाज नु बनाउण वास्ते मटीरियल चाहिदा है चीजां वस्तां चाहीदियां बगैर मटीरियल तो जहाज बनता ही नहीं गुरु अर्जन देव किस मटीरियल का जहाज है ये भट्ट ने शुरू किया पंक्ति पहली है सत रूप सत नाम सत संतोख धरे और ये सत की मूर्त है सत नाम उन्होंने अंदर वसदा है ते सत संतोख वो संतोखी भी ने इस आलम दे विच इस माहौल दे विच इस बिरती दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी विचरते ने रेंदे ने ते जेड़ा उन्हां दे कोल जांदा है उसनूं भी ठंडक जिहड़ी ओह प्रदान कर देंदे ने हुण गल जिहड़ी है गुरु अर्जन ते संपूर्ण ने ओह ते जहाज ने तारन वाले उन्होंने ते तारने तारने
ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬੇਗਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ। ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਉਂ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਐਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ, ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇ ਤੋਰੋ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਏ ਚਿੱਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਨਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ।

रैण विहाणी पछताणी उठ चली गई निरास। जिनको साधु भेटिया सो दरगह होए खलास। कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण वास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास।

तेज चेत मन में तज सियाण पछोड़ सगले भीख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू मोहल्ला पांजवा पातत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुल हो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करण कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाओ साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मरार माधो सुन नानक जीवे गाथ।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

दुश्मन तरे। प्रभ सिमरत काज बिगल ना लागे, प्रभ कह सिमरन अनदन जागे। प्रभ कह सिमरन भव ना ब्यापे, प्रभ कह सिमरन दुख ना संतापे। प्रभ का सिमरन साध कै संग सरबन दान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध।

निस्तरे अनक माया रंग तेखना बुझावे हर का नाम जपते आगावे जिह मार गए हो जाते अकेला तह हर नाम संग हो तू सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याये नानक गुरमुख परम गत पाइये छूटत नहीं कोट लाख बाही नाम जपत तह पार पराही

मन बंत बनाई उठत बैठत साध तिसह त्याई तिसह त्याए जो एक अलख ही हां ऊहा नानक तेरी रखे देह प्रसाद करे पुन बवदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान देह प्रसाद तू हथियार व्यवहारी तिस प्रभ को सास साह चितारी देह प्रसाद रा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप।

संपूर्ण फल है। देह प्रसाद परम गत पावे देह प्रसाद सुख सुमावे ऐसा प्रवते आंग वर कत लागहु गुर प्रसाद नानक मन जागहु। देह प्रसाद तुम प्रगट संसार तिस प्रभु कौ मूल ना मन हो विसार

कथ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सिंह, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

सर्व का तनि श्लोक उर तार है जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तारे अष्टपदि मिथ्या नाही रसना परस मान मह प्रीत निरंजन दर्श

आत्मनि कोर कई कोड़ पर दर्ब को हिर है, कई कोड़ पर दुख न कर है, कई कोड़ माया सुरम माह, कई कोड़ पर देश पर माह है।

कई कोट पाथर बिरखने बजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखेत्र, कई कोट देव दान विंदर सिर छतर, सगल समगरी अपने सूद धार, नानक जेह जेह भावे तेह तेह नहीं तारे।

सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज भमान सो नरक पाती होवत सुआन जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिस्टा का जंत

ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जान जन्म है पार ब्रह्म कै आव नहीं काश परम सहस सियाण पलया ना जाइये नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मरणीत।

अबर कहां को जाए, सब सिर एक निरंजन राय है जी की जुगत जा के सब हाथ अंतर बार जानो साध गुण दान बेंते पार नानक दास दबले हार।

सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस की यह रहत सत बजन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभु जाने उधर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सद

ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरह गोबिंद माने अंतर की उत्तर है चेंद आस अनेत त्यांग तरंग संजना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहो साध संग गण सागर तरहो

निवारे दुलाभ देहे तत्काल उधारे निर्मल शोभामृता की बानी एक नाम मन मा सुमानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उजता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते उजता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

असंख नाव संख थाव गम गम संख लो अह संख है सिर भार हो अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोब खान जिन ए लिखे तिसर नाहे जिव फरमाए तिव ते

कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरा सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे हो न कोई होर। तिथे जोध महावल सूर, तिन में राम रिया भरपूर, तिथे सीतो सीता में मैं माए, ताके रूप न कितने जाए। ना होए मरे ना ठाके जाए, जिनके राम से मन माए।

चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र धान्य चतर चक्र जान्य चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए।

सर्वां के सुसर्वानुराग त्रिभुक्त स्वरूप है शिष्य है सूत है के नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजुक्त अनूप है नृक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है परजुक्त अनूप है चाची छंद

कहें। सदैव प्रवाह जय है जा है भक्ति छंद प्रसाद के जहर जहूर के हाजर हजूर है में सुसला में समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के उसल चिराग है के कामन करी में के राज करही में के रोजी रहने के राज।

विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणाशी सधर्म विभूते सदा सचिदानंद शतरम प्रणाशी क्रीमण को निंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियं करियं क्रीम रीमें

परेशान करदे करिए सब बैरन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तुर भंकी रे प्यासा तुम छाड़ कोई अवर ना त्यों जो वर जाओ सो तुम ते पाऊं से सिख मारे तारिया चुन चुन सतरा मारे मारिया।

दुष्ट दोख ते ले उपजाए कृपा करी अंबर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता केल वे सकल देह को वरदा दुष्ट दोख इनको जा।

कारण सृष्टिका मूल रचया। जोत राखी धातु जग में आया मन चाव प्या प्रभाकम सुनिया हर मंगल गा उसके गृह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित सकी है सो दुख ना व्यापे गुरचरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे आन

0: पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो,
1: बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे कर प्रगट आख सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है, जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया।

पौड़ी सेव की संतो कई जी से चो सचते आया ओनी मंदे पैन रखन कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित्य।

पारपुस्तक संध्यावादन सिलभु सबगत समाधन मुख चूट बेबूकर सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला दिल के लड़ारंग दो धोती बस्त्र कपाटंग जय जान सुब्रह्मण करमंग सब।

0: खाने शुद्ध कर पहला इतवारी खाओ है नानक हंसा आदमी बद है जब पुर जाओ है महल
1: सब सबो सुत परम है।

0: जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी साहबां दी रहमत होई है आप संगतां ने श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन गुरुद्वारा साहिब प्रीमावन तों सरवण कीते हन। आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन सत्कारयोग रागी भाई सरबजीत सिंह लाडी अते उहनां दा रागी जथा श्री दरबार साहिब वाले समूह जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। सो अज पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जिन्हां दे शहीदी पुरब गुरु घर विखे मनाए जा रहे हैं। सो साहिबां दे शहीदी पुरब नूं शहीदी दिहाड़े नूं कोट कोट प्रणाम है। सो तीन श्री अखंड पाठ साहिब साध संगत जी आरंभ हैं जिन्हां दीआं संपूर्णतावां शामी 5:15 तक हो जाणगीआं। उस तों जो बाद कीर्तन फिर श्री रहिरास साहिब दे पाठ उपरंत फिर जो लगातार दीवान शामां नूं चलणगे। इस संबंध विच सो आप संगतां नूं बेनती आप जी ने साहिबां दे शहीदी पुरब मनाउंदिआं होइआं वध तों वध हाजरी भरनी जी। सो आओ हुण सतगुरु साहिब जी वल्लों बख्शिश मुख वाग दी कथा आप संगतां नूं सरवण करवा रहे हन सतकारयोग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले। उन्हां पासों बड़े प्यार नाल सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

0: मन कन प्रणा निरपय निरकाम कर्म दसरा कर्म चाचरी संत त्वय प्रसाद गोविंदे मुकुंदे उतारे अपारे जंग प्रयात शान चतर चक करता चतर चक्र हरता चतर चक्र वर्ती चतर चक्र प्रति
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र मानिए चतर चक्र गाने
0: चाचरी साधना सतरे न मित्रे न ब्रह्म न पितरे चतरे न मित्रे परे है पवित्रे भगवती शांत तो प्रसाद कथ दे क्या सच देसे क्या पेज पैसे क्या पेज लोके क्या दित सोके के राजन प्रभा है के तर्मन तुझा है के जतन कृति है के शतन क्षत्रि है
1: के अनुभव रूप
0: ज्ञात देव है के आप पेव है के रोजी रे जा के रही में रह
1: के
0: फुर गुना है के सान सा है
1: के कारण गुनिंद है के रोजी दे है
0: के राज करीम है के कर्म करीम है
2: के सर्व दिल है सर्व कली है
0: के सबत मान है के सबत दान है
1: के
0: सबत देश है के सबत पैसे है
1: के सबत राज है के सबत साज है
0: के सबत दीन है के सबत लीन है
1: के सबत जाह है के सबत पाह हो
0: के सबत देश है के सबत पैसे है
1: के सबत काल है के सबत पाल है
0: के सबत हंता के सबत गंता
1: के सबत पेखी के सबत
0: पेखी के सबत काज है के सबत राज है
1: के सबत सुख है के सबत भोख है
0: के सबत त्राण है के सबत पुराण है
1: के सबत देश है के सबत पैसा है
0: के सबत मान है सदैव प्रधान है
1: के सबत जाप है के सबत थाप है
0: के सबत पान है के सबत मान है
1: के सबत इंद्र है के सबत चंद्र है
0: के सबत कलीम है के परम फहीम है
1: के अकल लाम है के साहेब कलाम है
0: के सुनो वजू है तमाम रुजू है
1: हमें सुन सलाम है सुजत
0: मुदाम है गरीब से खास्ते गरीब परस्त है
1: हक में हमें जमीन और जमान है
0: तमीजो तमाम रुजुआ निदान है
1: हरीफ और रजी में रजाए करीन है
0: नेको तरंग है पेद है पंग है
1: रजी जड़नेवाज है गरीब और थेराज है
0: निर्गत स्वरूप है तरमुक्त बबूत है सदैव स्वरूप है पेदी अनूप है समस्त सलाम है सदैव काम है ओंकार रूप है अनाथ स्वरूप
1: अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: त्रिपंगन त्रिपंगन त्रिपादे गंजे अकादे
1: सर्वांग सर्वांग
0: त्रिपक्त स्वरूप है अशेज है स्यूत है
1: कि नरक प्रणास है पृथ्वी और प्रवास है
0: नरक प्रभा है सदैव सदा है
1: स्वरूप है प्रज्योत अनूप है
0: सदा है प्रभुक्त प्रभा है
1: स्वरूप है प्रज्योत अनूप

0: अनपवन आस मुन मन प्रकाश
1: गण गण प्रणाम जा थल मदाम
0: अचे ज अंग आसन अपंग
1: उपमा पार कत मत दार
0: जा थल मांड तेसुस पे अपांड
1: दत्त महंत तेसुस पे अंत
0: अनपवन आस तिर तर तर आस

0: कृपा करी हम पर जग माता
1: ग्रंथ करा पूरन सबराता
0: कृपक सकल दे को हरता
1: दुष्टिकियों के शय करता
0: श्री हस्ता जब दे
1: दयाला पूरन ग्रह ग्रंथ तत्काला
0: मन बाशत फल पावे सोई
1: दुख मध्य

0: देन मानी
1: देन मानी लेवे बाजो क्या करे विचारिया
0: तुझ बात समर्थ कोई नाई कृपा कर बनवारिया
1: हे सुनाओ हो थाओ नाई शब्द लाख सवारिया।

चरण चित लाया। सुपन की बात सुनी पेखी, सुपना नाम मंत्र सतगुर दृढ़ाया। रहाओ नह तिपरानो राज जोवन तन, बहुर बौर फिर ताया सुख पाया। तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया, बिन बूझे पशु की न्याई।

अंत नहीं कछ पारे। लाख लाख लाख कई कूरै, को है ऐसो विचारे। विषम विषम विषम ही पई है, लाल गुलार रंगारे। कहो नानक।

हित लपटायो कछु नहीं नाही कच तेरो आगे दृष्ट आवद सब प्रगट इहां मोहे परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दातार विसेरो कहो नानक एको परोसो बंधन काटन हार गुर मेरो कानड़ा महला पंजमा बिखे दल संतन तुमरे गाहियो तुमरी टेक भरोसा ठाकर सरन तुम्हारी आहियो रहाओ जन्म जन्म के महापरा

कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथाहयो। कृपा निदान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो। कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप धीरै, बिनसे मोह भरम दुख पीरै रहाओ। सिमरो दिन रैण गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना। संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया। कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मनै सुख पाइय, साध जना मिल हर जस गाइय रहाओ। कर किरपा प्रभ हृदय विसेरो, चरण संतन के माथा मेरो। पार ब्रह्म को सिमरो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना। कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन। रसना हर हर भोजन त्रिपतानी, अखियन को संतोख प्रभ दर्शन। रहाओ करनन पूर हो जस प्रीतम, कल मल दोख सगल मल हरसन। पावन धावन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन। सरन गही पूर्ण अविनाशी, आन उपाव थकत नहीं करसन। कर गए लिए नानक जन अपने, अंध कोर सागर नहीं मरसन। कानड़ा महला पंजवा, कुखत कपट खपट खल गर्जत। मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहं मत अनरत कुमत। हित प्रीतम पेकत भ्रमत लाख गरिया, अनत व्यवहार अचार विदहीनत। मम मद मात कोप जरिया, करुणा किरपाल कुपाल दिन बंद नानक।

पागै बिखे रस सिंह आसकत मूड़े काहे सुख मान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतित पावन सरन आयो उदर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अविलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्व सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर न मरंद।

फिर संकट जोन गर्म नहीं आयो। जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्म नहीं आयो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साधे साहु जिस पास बैठे आंसू ही है।

0: जय प्रसाद संपूर्ण फल
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रत्याग बरकत लागो
0: गुर प्रसाद नानक।

0: संग को पर जतन
1: की महिमा बरने कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा प्रभ माए समाने
1: साध के संग गोचर मिले
0: साध के संग सदा

0: गतमित कोए न लाखे।
1: सबके सेवक को ना पहुँचे,
0: सबके सेवक उचते उचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया।
1: की कीरी में कल रखे,
0: पसम करे लस्कर कोट लाखे।
1: इसका शासन काटते आप,
0: ताको रख दे कर हाथ।

जी की फतेह। गुरु प्यारी सत संगत, सतगुरां ने पार बख्शिश कीती, रहमत कीती, ये 40 दिन का जाप पूरा होया। ये रहमतां मेरे साहिब दियां जिन्हां ने बख्शिश करके रहमत करके अपनी सेवा आप लई। आओ हुण 5-7 मिनट दे विच श्लोक 9वें महल्ले दे शुरू हो जाने ने। भोग पाउणा आपां सारियां ही संगतां दे चरणां च बेनती करांगा, इधर आके बह जाओ ता कि आपां अखंड पाठ दे श्लोक सरवण कर सकीए। जिन्हां ने चाह पाणी छकना उह छक्यो, मुड़ के वापस इसी तरह विराजमान हो ता कि आपां भोग दे श्लोक अते गुरु की बाणी दा आनंद माण सकीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जय बैसावे बैसे भाई, जय भेजे तह जाओ, एवड धन होर को नहीं भाई, जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई, सदा सच्चे कै संग रहाउ, पहनन गुण चंगे आईया भाई, अपनी पात के साध आपे खाए, तिसका क्या सलाइए भाई, दर्शन को बल जाए, सतगुर विच वड्डियां वड्याईया भाई, कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी भाई, दूजे भाए फिराए, संगत ढोई ना मिले भाई, बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई, जिना तुरे कमाया नाओ, तिन विटो हो वारिया भाई, तिन कौ सदबल हारे जाओ, से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगाना, अनदिन सेवन गुर अपना, अन दिन अणद रहान, नानक से मोह सोण सचै दर देसान, मुख सचे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाए, सच्चा शब्द मन वसिया सतगुर माहे समाए, सची राशि सच धन उत्तम पदवी पाए, सच सुनाए।

करी गुर का शब्द सुमाई आपे सच्चा बख्श ले कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द सुमाए भय का सहज सिंगार करो सच रहो दिवलाए नानक नामो मन वसे हर दरगे लय छुड़ाए पावीहा सगली धरती जे फिरै उड़ चढ़े आकाश सतगुर मिलै जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किछ तिसकै पास बिन बोलिया सब किछ जानदा किसे आगे कीते अरदास नानक घट घट को वरतदा शब्द करे परगास नानक तसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब परफड़े सब जग हरियावल हो आए।

पुण्य सलेखी की पई बारी ए पहरो की पंचो नारी पंच महरख दसाख सनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलाव लगावहि अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पातर द्वितीया मालक।

आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सो कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जेहो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावा जेत सभावा विण भाणे के नाए करी, जेती सेठ पाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणक जेक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नवर खाए कह जस कीर्त जागले। जे तस नदर न आवई ता वात ना पूछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तिहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे, सुनै सिद्ध पीर सरनाथ, सुनै धरत धवल आकाश, सुनै दीप लोह पताल, सुनै पोए न सकै काल। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, सुनै ईसर ब्रह्मा इंद, सुनै मुख सलाहण मंद, सुनै जोग जुगतन भेद, सुनै सात सिमरत वेद। नानक भगत सदा विगास, सुने दुख पाप का नास, सुने सत संतोख ज्ञान, सुने अड़सठ का स्नान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। नानक भगत सदा विगास, सुने दुख पाप का नास, सुने सरा गुणा के गा, सुने सेख पीर पातशाह, सुने अंधे पावे राह, सुने हाथ विसगाहो। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए, कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होए मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह झोटा ना खाए, मन्ने जमके साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पात से ऊपर गड़ जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवारे

मन नानक पावे ना भैख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दर गैमान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जी को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत जी को बुझे होवे सचियार तबले ऊपर किता पार धरती होर परे होर होर तहते पार तले कमण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एह लिखा लिख जाने कोय लिखा लिखिया किता होय केता तान सवाल्यो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तहते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तद पावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ संख पूजा संख तप ताओ संख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती संग दातार असंख सुरमो भख सार असंख मूल लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तद पावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर संख गल वड हत्या कमाए संख पापी पाप कर जाए संख कूड़ियार कूड़े फिराए संख मलेश मल भख खाए असंख निंदक सर करह भार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सर संजोग वखाण जिन्हें लिखे तै सर नाहे जे फरमाए तैव तै पाहे जेता कीता तेता नाओवन नावे नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तद पावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी तोते उतर सखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये ओ धोए भरिए मद पापा कै संग ओ तोपै नावे कै